0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Consciously Super Speciality Hospital, Parvathipuram Nagarkoil. Emergency services 24 hours. அனைத்து சிகிச்சை முறைகள் ஒரே இடத்தில்.
2: உங்கள் இதயத்தை மாரடைப்பிலிருந்து பாதுகாத்திட angiogram.

0: பவனி வரும் குமிர்தலா நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. நேர்களே, நிகழ்ச்சியில் இதுவரை உங்களோடு ஆர் பதனஸ் பரமேஷ். இனி கேட்போம் அகில பாரத இசை நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக.
1: कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन.
2: नमस्कार. इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी.
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है.
2: अ टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर.
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं. प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है.
2: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है. आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है.
2: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे. मध्यले तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो ना जियरा मोरा. और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर.
2: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग. द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे. दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा. शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics mano nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: गीत है विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुमी एरी आली और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज मधुशी स्मिता मोकाशी रिंग रिंग राग मारो बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।